जप आदि सच जुगाद सच है पी सच नानक खुशी पी सच कवन बधाई कह सको बे अंत गुणिता कर कृपा

0: कदी भुली ना जिदन इनू कट दिता कड़क की धुप विच तेनू किसी निशान ही देनी जिदन इनू कट दिता सच जानी तेनू मिठे फल नहीं देने जेडी मैं अर्ज करनी चाहना जिदन तू इनू कट दिता सच जानी तेरे अंदर बीमारियां का जन्म होना तेनू साह लैण वाली हवा भी साह दे पिया करदा रुख नू कटी ना तक पर एक बेनती करा रुख नू कट दईए ओदी छां चली जांदी ए रुख नू कट दईए ओदे फल चले जांदे ने रुख नू कट दईए ता ओ हवा नू साफ करन वाली ताकत चली जांदी ए पर गुरु अर्जुन देव रुख दी तरह ने जिन्हां नू कटण दा यतन कीता ते कटिया पर चेते रखी इहदी बाणी दी ठंड नहीं जानी अज भी कोल आई तपदिया तेनू सुखमनी साहिब अंदर दी ठंड रहे तेनू बिलावल अंदर दा रस देगा तेनू सूरज दे शब्द अंदर दा टिका देंगे एक गल वकरी के जिरांद रुख दी तरह रुख ता कटण तो बाद छां फल ठंड किसे नू नहीं दे सकता पर गुरु अर्जुन देव शहीद होने तो बाद सदियां लंघ गईयां ने उन्हां दी बाणी पढ़ने अज भी तपदे होए हिरदियां नू शांति पै दिंदे पर भाई वीर सिंह उन्हां ने एक शब्द कहा वो कहिंदे ओ धरती दे तंग दिल लोको क्यों नाल असाडे लड़दे चौड़े दाओ आसानी वधना सिद्धे जाना चढ़ दे रुख ने किन्नी पुछा मलनी है ए धरती दे तंग दे लोको क्यों नाल असाडे लड़दे चौड़े दाओ आसानी वधना सिद्धे जाना चढ़ दे घेरे अते फैलाओ असाडे विच आसमाना होसन जिस थाओ धरती ते मल्ली अजे तुसी हो लड़दे देखो साडी किन्नी कु थां ची मल्ली बैठे हां जिस थाओ धरती ते मल्ली अजे तुसी हो लड़दो उस गुरु अर्जुन देव जी ने रुख दी तरह जरान ता है पर मैं बेनती करा रुख तो ऊपर ने रुख कटिया जाए छां ते फल चले जांदे ने पर तत्ती तवी ते बैठ गए सुखमनी दी ठंड है सूरज दी ठंड है बिलावल दी ठंड है कौड़ी विच ठंड है सानू अंदर दा सकून दिता ते सब तो वड्डी रहमत कीती उहने कि गुरु ग्रंथ साहिब दी पवित्र बाणी सानू दे गए सिखो कदी उहना दा परस्कार ना भुलिए कहिंदे बेटा मैं खजाना दे चलिया हुण इस खजाने नू तू खा लई इहनू खर्च लई शब्द ने कि पिओ दादे का खोल दिता खजाना ता मेरा मन भया निदाना रतन लाल जाता कछू न मोल भरे भंडार अखूट अतोल खावे खर्चा रल मिल भाई तोट न आवे वध हो जाई इक कृपा उन्हें होर कीती भावे अज एक नवी गल चल पई है कि भगतां नू वख वख कीता जांदा मैं कह के समाप्ति करना कि इन्हां नू जी गुरु शब्द कहो शब्द गुरु है धन गुरु ग्रंथ साहिब दा असी मत्थे टेकने आ कभी गुरु जेड़ा सतगुरु की लहर है ना हिंदुस्तान विच एहो जी लहर शायद किते कोई मिले शायद गुरु अर्जुन देव जी ने इन्नी मेहर कीती है मैं कहना दाता तेरा परोपकार हिंदुस्तान की घट गिनती ते तेरे परोपकार जिन्हां नू जात करके नफरत कीती जांदी है उन्हां नू कभी भुलना नहीं चाहिदा ओ किवें कि जिस महापुरश नू मंदिर विचों धक्के पए उन्हां ने इथों तक कह दिता सी चिंदड़ी जात मेरी जादम राया छीपे के जन्म काहे को आया उन्हें फिर दूजी बारी क्या ए पंडिया मोको ढेड कहत है तेरी पैज पछाउंदी कोयला मेरे गुरु अर्जुन साहिब ने क्या नहीं भावे वक्ती तौर ते तुहानू मंदिर विचों धक्के मारे पर तुहाडे हिरदे दी आवाज नू हरमंदर विच चका के जाऊंगा जिन्हां नू लोक मंदिर विच निशन बहन देंदे मेरे गुरु अर्जुन देव सदा लई हरमंदर विच टिका गए कि गुरु अर्जुन देव जी दी रहमत ने आओ उस दाते दे चरणां नाल आपां जुड़िए जे शहादत वाला दिन मनाने आ ते यतन करिए दाता अगले साल तक सानू भी जरांद दे दे सानू भाणा मनन दी जाच आ जाए तत्ती तवी ते तां की बहना असी तां बैड उत्ते बैठे एसी विच बैठे तपी जाने तत्ती तवी ते किन्ने जाके बहना तक्यो खां असी तां ठंड विच रहिते कल्पने पए आ ते ओ कैसा हिरदा जिहड़ा अग विच बैठा भी ठंडा है एसी अंदर दी अवस्था एसी ब्रह्म ज्ञानी इहनू कहिंदे ने तां जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो इन्हियां को बेनतियां प्रवान करियो होइयां बेअंत भुलां साध संगत आप कृपा करके बख्श देनियां अज थोड़ा जिहा मैं संकोच के तां चलिया क्योंकि कल काफी थकावट हो गई शरीर ही ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ।
1: ਪੁੱਛਣ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਛੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਹਾਰੀ, ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲੇ ਮੁਕਤੇ ਸੁਣੋ ਸੰਸਾਰੀ। ਕਲਯੁਗ ਪੀੜੀ ਸੋਡੀਆਂ, ਅਵਚਲ ਨੀਵ ਉਸਾਰ ਖਲਾਰੀ। ਕਲਯੁਗ ਪੀੜੀ ਸੋਡੀਆਂ, ਅਵਚਲ ਨੀਵ ਉਸਾਰ ਖਲਾਰੀ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਤਿਗੁਰ

साहब ने एक शब्द वरत्या, कह लगे वधी वेल बहु पीढ़ी चाली। ठीक है पीढ़ी भी चली है पर धर्म कला हर बंद बहाली, वो एक मर्यादा कायम करेगा। साध संगत जदों गुरु हरगोबिंद साहब का आगमन होए है, साहब ने कहा गुरबाणी सखी गावे, उदो बाणी गाई गई, आ टप्पे नहीं आ खुतरे नहीं मचाए गए, शब्द गायन किए गए, कीर्तन किया गया। अज साडे लोकां दी बिरती है ना, मैं खिन विचों निकल लगा, गल करनी चाहीदी है। गुरु दे घर जे पुत्तर दी दात दिंदा है तां वी मेरा गुरु उस गुरबाणी नाल जुड़दा है, जे किते पुत्तर चलाणा वी कर जांदा है गुरु हरगोबिंद साहिब दे घर विच अटल तां वी बाणी दी गल करदा है। पर साडे लोकां नूं टप्पो सवेरे अखंड पाठ कराणगे, लंगर भी चलदा होवेगा, ते शाम नूं उसे पुत्तर नूं लै के बकरे बुलांदे होणगे, गुरु उहनां नूं चेती नहीं, रब चेते नहीं। साहब ने क्या कहन लगे गुरबाणी गाओ, उस मेरे मालिक ने मेहर कीती है, उहने मैनूं दात दित्ती है, ते अज बजुर्ग बाबे बुढ़े नूं बुलाओ। जदों बाबा बुढ़ा जी आए दीदार पाए ते हाथ विच चुकिया, ते गुरु अर्जन देव ने कहा बाबा जी इस बच्चे दा नाम देख के कहन लगे हरगोबिंद। नाम बाबे बुढ़ा जी ने रखिया हरगोबिंद। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब दी आमद होई है, सिख संगतां खुश ने, ते सिरसीए ने एक नवी चाल चली। मैं थोड़ा जा कह के अगे समाप्ति करांगा क्योंकि यही हफ्ता मेरे कोल है, कोशिश करांगा साहिब दा जीवन तुहाडे नाल सांझा कर सकां। सिरसीए ने चाल चली, असल विच अकाल तख्त नाल टक्कर अज नहीं, जिदन एदा रचनहारा पैदा होया सी ना उदन भी दुष्ट बिरती कहिंदी सी किते खत्म हो जाए। गुरु हरगोबिंद साहिब नूं खत्म करन लई पहला दाई नूं खरीदिया कि इस बच्चे नूं जहर दे दे, इह खत्म हो जाए गद्दी मेरे कोल आ जाएगी। पर दाई भी पेश ना गई, परत के सपेरे नूं लियांदा कि सप लै जा हरगोबिंद नूं डंग मार दे, इहदी पीढ़ी खत्म हो जाए। पर सपेरा भी कुछ ना कर सकिया, साहिब ने सप नूं दड़ के रख दिता। खड़ावे नूं कहा दही विच जहर पिला के मिला मार दे, ता भी किन्ने ने कुछ ना होया, आप सूल उठ के बामण मर गया, दाई आप खत्म हो गई, सपेरा भी तरले लेंदा गया। पर गुरु हरगोबिंद नवा नरोए, सतगुरु ते कोई असर नहीं। प्यारियो इधर फिरतिया दिन रात उसल वट लेंदा किवें खत्म होवे, पर इधर गुरु हरगोबिंद साहिब बचपन विच शीतला ने बाहर कर दिता, सारा शरीर फलूमिया नाल भरिया गया, ताप दी भूकी आ गई, सारा दिन बेहोश रहना। कवि संतोख सिंह ने इथे एक शब्द भी वरते है, कहिंदे ने जदों शीतला होई ते माता गंगा जी कच्ची लस्सी लैके गए, आ दुर्गियाणे मंदिर गए, उथे जाके कच्ची लस्सी चाढ़ी, भाई वीर सिंह सिद्ध करदा है मंदिर बनी बाद विच। ये गल है ही नहीं तवारीख मुताबक, पर बाणी विचों देखिए गुरु अर्जन देव महाराज कोल ये गल आई कि शीतला प्रगट होई, ते सतगुरु कुछ करिए। महाराज ने एक बचन उच्चारण किया, कहन लगे नेत्र प्रगाश किया गुरुदेव, मेरे गुरु ने कृपा की, मेरे बच्चे दी अज अखां खुलियां, ताप तो उठे गुरु हरगोबिंद। कहन लगे नेत्र प्रगाश किया गुरुदेव, कहिंदे ने गुरु नानक अज तेरी कृपा नाल भरम गए, वहम भरम चले गए, भरम गए पूर्ण पई सेव, शीतला ते रखिया बिहारी। कहन लगे रब ने रखिया पार ब्रह्म प्रभु कृपा धारी, सारे शब्द विच माता दा जिक्र ही कोई नहीं, अर्थ करके देख लो, शीतला ते रखिया बिहारी, पार ब्रह्म प्रभु कृपा धारी, नानक नाम जपै सो जीवै, साध संग हर अमृत पीवै। उस वाहिगुरु ने रखिया, गुरु हरगोबिंद साहिब उन्हां दे जीवन नूं कभी पढ़ो, उस दाते ने भी भाणे मनण विच कमाल कर दिती। बचपन विच पिता चले गए, तीन वार खूनी किते थके ताए ने, कदी ग्वालियर दे किले विच कैद, कदी 9 साल दी उम्र विच पुत्र अचल चला गया, सामने बाबा गुरदत्ता चला गया। ओ गुरु हरगोबिंद साहिब ओदे नेत्रां दे सामने सिख कौम दे ओ महान हीरे तोरे, जिन्हां विचों बाबा बुढ़ा। पर मेरा दाता चढ़दी कला विच एदू वध की होवेगा कि सवेरे बच्ची दी बरात आउणी होवे ते रात नूं दुश्मन आके घेरा पा दे, ओ गुरु फिर भी अडोल रहे। मैं उन्हां दे जीवन दी इक झांकी तुहाडे नाल सांझी करके समाप्ति करना। ओ गुरु प्रीत दा मुजस्म है, ओनू अज भी प्रीत करो गुरु हरगोबिंद नूं।

तो दबे हुए लोग उठे ने ते बादशाह दे विरुद्ध उन्होंने शस्त्र चुके। इत्थे लकड़ दी तोप चली, मेरे गुरु हरगोबिंद साहब दे सिख विद्वान कहिंदे ने 13 सिख शहीद होए ने। कोई 13 दी गिनती करदा, कोई वध करदा। जदों सतगुरु जित गए ने, सारे परिवार नूं चबाल भेज दिता है भाई लंगाह दे कोल। उस ढिलो सरदार दी बड़ी वड्डी कुरबानी है। ओदे खानदान दे विचों बघेल सिंह होया है, जिन्हें दिल्ली लाल किले ते केसरी निशान चुलाया, उन्हें अपने घर रखे। अज वो स्थान है चबहाल जिथे बीबी वीरो का आनंद कारज किया गया, लावा कीतियां गई। साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जदों जंग जीती फिर अपने शहीद सिखां दे कोल गए ने। एक एक सिख दे चेहरे नूं पूंजिया ते प्यार नाल भिज के कहा, प्यारियो सतखंड परवान तुरे जांदे ने। कई विद्वाना ने इहदा जिक्र नहीं किया, पर मेरा गुरु कैसी कृपा करदा है, अचिनचेत लाशां दे विच्चों आवाज सुनाई दिती है। कोई हुंगरां भरदा है ते नाले नाल कही जांदा है वाहिगुरु वाहिगुरु। सतगुरु आवाज नूं देख के रुके ने, खब्बे हथ की तकदे ने। गुरु दे प्रेम विच भिज्जा सिख भाई मोहन जमीन ते पिया है ते ओहदे मुख विच्चों गुरु गुरु की आवाज पई आउंदी है। भाई मोहन ओ शरीर ओहदा लत पाते खून दे नाल जदों खब्बे इहनूं तकिया है ते सज्जो एक होर आवाज आई वाहिगुरु। ते जदों साहिब ने उधर ध्यान किया ते ओ भाई गोपाल पिया होया। ये साडी तवारीख है। कहिंदे ने गुरु हरगोबिंद साहिब ने दोनां दे चेहरे पूंजे ने इकट्ठियां नूं, एक नूं खब्बे पासे एक नूं सज्जे पासे पा अपनी गोद विच रख लिया ते आवाज देख के कहिंदे ने, बेटा मोहन भाई गोपाल अपने नेत्र तां खोलो, देख बेटा तुहानू कौन लैण आया है, मैं तुहानू अपनी गोद विच रखिया है। ते जदों दोनां ने अखां खोलियां ते दोनां दे नेत्र भर आए, जबान विचों आवाज नहीं निकली ते साहिब ने कहा, मोहन गोपाल तुसी कर्म खंड विच पहुंचे हो, क्योंकि कर्म खंड विच केवल सूरमियां नूं थाए, कायर ते बुझ दिल कदी कर्म खंड विच पहुंच नहीं सकते। साहिब ने बाणी विच कहा, कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै होर ना कोई होर, तिथै जोध महाबलसूर, उथे सूरमे पहुंचदे ने। बेटा कुछ मंगो ता सही। ते भाई गोपाल ने हाथ जोड़ लै, कहन लगा, सतगुरु जो कुछ तेरे दर तो मंगिया सी ओ कुछ ता झोली विच पा दिते, होर तेरे दर तो की मंगिए। साहिब ने पुछया, की मंगिया सी? आखदा, सतगुरु दोनों जने असी इकट्ठे संगत विच बैठ के बाणी सुनदे सां, इकट्ठे शस्त्र विद्या दा अभ्यास करदे सां, इकट्ठे तेरे लंगर दी सेवा करदे सां, ते एक दिन साडे दोनां दा मन बनिया, रह रात तो बाद अरदास कीती सी, सतगुरु एक मेहर करी, जिदन दुनिया तो जाइए ओदन भी इकट्ठे जाइए, ते जदो तुरन लगीए ओदन गुरु हरगोबिंद साहब तू अपने हथी सानू दुनिया तो विदया करदा हुण। कहिंदे ने साडी अरदास नूं भाग लगा, गुरु हरगोबिंद साहब ने दोनों दे शीस घुट के अपने सीने नाल लाए ते साहब ने आसीस दिती, बेटा जाओ जीवन मरण तो मुक्त हो गए। भगवान दास घेरड़ चंदू दा रिश्तेदार सी, यह नहीं सी गुरु हरगोबिंद साहब नूं प्रवान करदा। यह आया इन्हें रोकया, गुरु हरगोबिंद साहब ने कहा, भी तू बाज आ जा, एवें अप शब्द बोल ना। कहिंदे ने बाज किथे आवे, इन्हे कुछ लोग इकट्ठे कर लै। कहिंदा देखो साडे वर्गा खत्री शब्द वरते ने किड्डे भैड़े, साडे वर्गा खत्री पुत्र धियां ने घर वालियां ने गुरु बनिया फिरदा। कहिंदा आओ हल्ला करिए, इहदे पल्ले कीए, इह गुरु बनिया फिरदा साडे वर्गा आम बंदा। ते सिखां ने कहिंदे ने इस मनुख दी जबान टिकी ना, इन्हें गुरु नानक साहिब दी शान दे खिलाफ बोलिया। ते गुरु का सिख उठिया, उन्हें कृपान लैके चटका के एक पासे चा कीता, इहदे शरीर नूं जल प्रवाह कर दिता, दरिया दे अंदर रोड़ दिता। जदों इहदे पुत्र रतन चंद नूं पता लगा, ओ जलंधर पहुंचे, उन्हें जाके अपनी फरियाद कीती, इधरों इहदा पुत्र रतन चंद ते चंदू दा पुत्र करम चंद, इन्हां दोनां ने फौज चाड़ के लियांदी। गुरु हरगोबिंद साहिब ने दूजी जंग लड़ी ते दूजी जंग विच भी मेरे गुरदेव दी जित होई। तीजी जंग जिहड़ी है नथाणे दी ढाब दी है, गुरु के सिख भाई दयाल सिंह हरी दो घोड़े लैके आए, एक दा नाम दिलबाग सी, एक दा नाम गुलबाग सी। जदों

जो लड़ै दीन के हेत पुर्जा पुर्जा कट मरै कबहू ना छाड़ै खेत मरता मरता जग मुआ कबीर मरता मरता जग मुआ मर भी ना जानिया कोए ऐसी मरनी जो मरे बहुर ना मरना हो ऐसी मरनी जो मरे बहुर ना मरना हो।

होते परम सम्मान योग शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाई मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों आप जी ने इस संध्या वेले दे दीवान अंदर हजूर दे पावन पवित्र इलाही वचना दा रस पिना कीर्तन सरवण कीता है। आप जी बड़े प्यार दे नाल सतगुरु गुरु रामदास महाराज उन्हां दी उस्तत अंदर उचारण कीते हुए सवैया विचों पट्टां दे बचन आपने गुरबाणी कीर्तन विच सरवण कीते ने, जिथे आपां रोजाना सतगुरां दे पावन पवित्र इलाही बचना दी विचार गुरु की बाणी दी विचार करने हैं। उथे हर बुधवार गुरुदेव जी दे पवित्र इतिहास नूं भी आपां वाच रहे हां। जिवें पिछले बुधवार आपां ने विचार कीती सी कि पट्टी दे इलाके दा चौधरी जिस दे घर अंदर पंज धियां ने, उन्हां विचों एक दा किरदार एक दी भावना नूं परमेश्वर ने इहो जिहा भाग लाया कि जिथे भी कोई महापुरश कोई गुरमुख जन बैठदे ने, इह बच्ची उन्हां दे कोल बैठ के उन्हां दे बचन श्रवण करदी। ते एक दिन धन गुरु नानक साहब जी दे दर तों बख्शे हुए कुछ गुरसिख जड़े एकांत विच बैठ के गुरबाणी दी विचार कर रहे सन कि हर एक नूं रिजक देण वाला केवल एक परमेश्वर है, हर एक दे भागां विच जो मालक ने लिख दिता है ओ कुछ उस नूं नसीब हो जांदा है। ते इस बच्ची ने गुरदेव दे उस शलोक नूं अपने खिरदे विच दृढ़ कर लिया ते जबान तो कंठ कर लिया कि पुरखां बिरखां तीरथां तटां मेघां खेतां के हर एक नूं रिजक देण वाला परमेश्वर। जदों बच्ची घर आई है ते एक दिन आपस विच पंजे भैणां बैठियां ने ते चार विचार करदियां ने चार जनियां कि साडा बाप साडा बापू पिता कितना चंगा है, जड़ा पैरन नूं बस्त्र देंदा है, खान नूं भोजन देंदा है, तन ते पाण वास्ते सुंदर गहने लै के देंदा है। ते इह खामोश हो के सब कुछ सुनी जा रही है, पर जदों इहनूं पुछया गया तू क्यों नहीं बोलदी, ते इस बच्ची ने इक्को उत्तर दिता सी, नहीं भैणों ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਵੇ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਸਤਰ ਪਾਨੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤਨ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜ ਝਗੜ ਕੇ ਉੱਠ ਗਈਆਂ ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਬਾਪੂ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨੀਆਂ ਵਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀਏ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਾਪੂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,
असलियत पुछें ते जो कुछ तू राज भाग मानना पे ए भी उस करतार दी दित्ती दाते एवें भुलेखे विच पै के तू कह रहा मैं देण वाला कोई किसे नू देण वाला नहीं अपने भाग खांदे ने उस दे मन नू इन्नी हंकार नू चोट वजी कह लगा जे तू रब दा दिता खानी है जे तू करतार निरंकार दा दिता खानी है ते साड़ी बरादरी विच एक कोड़ी है मैं तेनू ओदे लड़ ला देंगा फिर देखांगा कि ओ करतार ओ निरंकार तेरे भागां विच जे ओवे तू अपने भागां विच इत्थे नरक भोगेंगे। उस बच्ची ने सत बचन करके प्रवान कर ले इथों तक आपां ने विचार कीती सी। आओ इस तो अगे इस पवित्र प्रसंग नू आपां वचने ते सतगुरु गुरु रामदास दे दर दी लईए टेक। कवि संतोख सिंह ने इस प्रसंग नू गुरु अर्जन देव जी दे वेले नाल संबंधित कीता पर जदों इतिहास नू पड़चोलने आ ते असलीयत ते ए प्रसंग गुरु रामदास जी दे वेले वापरे। गुरु रामदास सरोवर करीब करीब तैयार करा चुके सन पूर्ण ताल खटाया भाई गुरदास होरां ने जिक्र कीता पर खैर जिमें कवि संतोख सिंह ने इस नू बयान कीता अज इस दीवान दे अंदर संत बाबा लाभ सिंह जी कार सेवा वाले उन्हां दी सुपत्नी बीबी हरभजन कौर जिन्हां दी सतवीं बरसी उन्हां दे सपुत्र वल्लों भी इह समागम मनाए जा रहे ने। सतगुरु कृपा करे इस परिवार नू अपने दर नाल जोड़ी रखे। आओ प्यारियो इस इतिहासक प्रसंग दी विचार करन तो पहला मनोबिरतियां एकाग्र करो सुरत गुरदेव दे चरना अंदर जोड़ो ते बख्शो आशीष बड़े प्यार अदब दे नाल उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी करो बख्शिश गुरमुखो फिर उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी।

है कि सच नानक होशी की सच तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा जब गुर बोले तब विषम होए जाए हम जैसे अपराधी अवर कोई इराखे जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाए जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाए

जो हमारी बेद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम्हार जानो हो आपे हम रुड़ते फिरते कोई बात ना पूछता।

जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ा तू गुर पिता तू है गुर माता तू गुर बंधक मेरा सखा सखा जो हमारी विद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जान हो आपे हम रुड़ते फिरते कोई बात ना पूछता।